ना मला मा को वाह का देखी ए नाया मित गए हम अकाशवरुं तिमं ए नागे किबन नुबैक हं तकं ए दुनिये फहे ए हिंदु ए ना एकमुं रखा तेरे गते आदि तिमं ए ना एं अमरु कुरा खंत नुकुला नमा जलुगा ए ना हैयर कुरवे नकं कशवरे आदि ए ना वाहुसी निकमत वेगं वा मी हंगे तेरे ने।

0: मी देहरा जगड़ हेगड़े 30 मिनट का देमे के निस्ते ने मेरे के ईशान अमाद वगुतु के बंगिया बंगे दुआ
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: Munifuhi filovadi, malumatke hazana musalikode, emme itubar kurve baveria.
1: Dehira jege adu.
0: Enghas hatarustek salis noe kilohertz medium wave, adiha noe megahertz FM band.
2: Hello, koma miedu kine?
3: Vara rangol?
4: Vara fakka ham.
5: Miedu, eha rangal no.
4: Vara baliko.
5: Deng ne kala gote?
3: Hama vara besto.
4: Deng eha eha no.
2: Ehun teringe hala hual olum filwala waha kada kaluma.
3: Koma budu do hai gere gadu ekar gad sum minute ka. Tivi raje gadu kenes teni?
5: Miedu kine?
0: Engha satarste ka 49 kilohertz medium wave. Adi 89 megahertz FM band.
2: Ehara miharu ge film toge higge manzar taka lavatoge teriya fina lama.
6: E balam hira latifa. Konta ka gotta ti annani e
3: mona. Bemani kihine ba.
7: Delo fo veje hingavas veje ule
3: Mee danna adetta.
2: Adi aghori namakaayko TikTok challenge wes.
3: Komme aati te doya gare gano ekar jahar studio em bagutu.
2: Screen. Engha 7.40 kilohertz medium wave adi 890 megahertz FM band. Intizar kollaba.
8: विष्णु ताजा कुर्मट्टा का अधिरूलम का तफात कंतत्त के कुरंजे है। राजुआ स्क्रेबल बुरफत लफ्सुफद विष्णु जे कुलीवर्ता की विष्णु ताजा का मध्य के बेहतुमा कुलीविदान कुलीवर्ता के
9: मिफद कुलीवरे कुलहेदम की विष्णु तारक की वाण कमे।
1: अंग्यादी उंगन नादी मुनिफोई फिलवा दिनुमोगा
0: थेदुवेर कम्माए को
1: ekweri kamaayko
0: eruves miharuves rayitunnaayko rayitunna emme gatuga divehrajjege adu
1: engha 7.40 kilohertz medium wave addi 90 megahertz fm band